सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 17 जुलाई 2026 शुक्रवार, अषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय हुआ है 5:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:26 पर।

के दर्द और हित का भाव रखने वालों ने हर हालत में शीतलता बांटने का ही कार्य किया है। हमें चाहे कितने ही नफरत फैलाने वाले क्यों न मिल जाए, हमने अंगार नहीं बन जाना। हमने जलती हुई आग को थामने के लिए पानी का, बरसात का रूप बनना है। हमने उस अवस्था को बनाए रखना है।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। कार्यक्रम आधारित है पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों पर। पेश करेंगे भारत सोपुरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी, लेके आया हूं वितस्ता गीतमाला का एक नया एपिसोड। वितस्ता गीतमाला पूरे विश्व में सुना जाता है। हमारे पास जबलपुर मध्य प्रदेश से पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी ने अपने कविता संग्रह FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता को भेजे हैं। इन कविता संग्रहों का अध्ययन करने के बाद हमने निर्णय किया कि वितस्ता गीतमाला के माध्यम से उनकी लिखी कविताओं को आप तक पहुँचा सकें। मीना भट्ट सिद्धार्थ 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ साल लोक आयुक्त भी रही हैं। एक कवित्री के नाते जाने माने कवियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद से समय समय पर इन्हें नवाजा है, जैसे बीकानेर से श्री रवि शुक्ल जी, सीहोर मध्य प्रदेश से श्री धर्मराज देशराज जी, सीडी मध्य प्रदेश से श्री नजर द्विवेदी जी, मुंबई से श्री हीरालाल यादव व अन्य। आज जो कविताएं, गजलें आपको हम सुनाएंगे वो श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के प्रकाशित काव्य संग्रहों एहसास के मोती व ख्याले मीना पर आधारित है। और आज का ये एपिसोड समर्पित है श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के दिवंगत पुत्र सिद्धार्थ को, जिनका निधन 3 अप्रैल 2022 को हुआ था। पहले कुछ दोहे आपको सुनाते हैं जिनके माध्यम से हम उनके सुपुत्र सिद्धार्थ जी को याद करेंगे। मीना जी लिखती हैं, जन्म मरण का खेल ये समझ न पाई पार्थ, गीत गजल था छंद भी सब कुछ था सिद्धार्थ, बसे क्षितिज के पार तुम भूल गए सिद्धार्थ, अब जीवन ये बोझ है क्या साउथ क्या नॉर्थ, चली तेज पुछवा हवा रूप बड़ा विकराल, जलता दीपक बुझ गया खोया घर का लाल, पीर समझ पाया नहीं बैरी था संसार, मित्र अकेले मातू थी करे स्वप्न साकार, सूखे सूखे हैं अधर अखियों में है नीर, ममता बड़ी अधीर है उर है अथा पीर, कबीरा साखी मौन है चुप मीरा की श्याम, रूठे सीता राम भी जप लूं कैसे नाम, चर्चा करती रात दिन मिटे नहीं संताप, खंडित है विश्वास सब करते नित विलाप, मोह त्याग कर चल दिया भूला मातु दुलार, पल पल लड़ता मौत से लिए अश्व की धार, आतिशय अंतस पीर है मनवा रहे उदास, राजा बेटा लाडला करे हृदय में वास, बस यादें ही शेष है मीना अब सिद्धार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ। ये शब्द है मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के अपने पुत्र के लिए।

मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, जिंदगी भर के मेरे असबाब पत्थर हो गए, आपके जाते ही सारे ख्वाब पत्थर हो गए, देखकर तूफान सब गिरदाब पत्थर हो गए, आंसुओं के भी मेरे सैलाब पत्थर हो गए, बाद शब की सांस भी नाजो अदा से थम गई, मात खाए चांद तारे बाब पत्थर हो गए। अब मयसर है कहां हमको वफा संसार में, रिश्ते नाते और सब अहबाब पत्थर हो गए, अब तलक दुनिया में जिनकी कोई कीमत ही न थी, जब तराशा है उन्हें नायाब पत्थर हो गए, इल्तिजा है दे खुशी इस सरजमी को ऐ खुदा, नर्म नाजुक फूल क्या अब दाब पत्थर हो गए, मुफलिसों को पूछता कोई नहीं संसार में, जुल्म भी इतने हुए आसाब पत्थर हो गए, कब मिले इनको रिहाई इस कफस से अब खुदा, कैद में मीना हसी सुरखाब पत्थर हो गए।

एक बहुत ही उम्दा गजल मीना जी ने लिखी है और मीना जी कहती हैं, बेजुबां रखते नहीं नफरत किसी के वास्ते, आदमी रखते हैं लेकिन आदमी के वास्ते, आरजू कुछ और इसको और न कोई जुस्तजू, बस ये दिल पागल हुआ है आप ही के वास्ते। मुख्तसर है जिंदगी, तैयारी कर लो हश्र की, वक्त कुछ अपना निकालो बंदगी के वास्ते। हाथ से अपने तू मुझको जहर का प्याला पिला, आ गया दीवाना तेरा खुदकशी के वास्ते। मेरी किस्मत में कहीं कोई दिया रोशन न था, मैंने खुद को ही जलाया रोशनी के वास्ते। छोटे कामों से नहीं मिलती बुलंदी दोस्तों, काम कुछ ऊंचा करो अब बर्तरी के वास्ते। एक झलक तेरी मिले तो रुखसती हो पुरसकूं, तेरे दर पर आया हूं मैं बस इसी के वास्ते। मीर गालिब दाग के जैसे ही मीना ने भी अब जिंदगी अपनी लुटा दी शायरी के वास्ते, जिंदगी अपनी लुटा दी शायरी के वास्ते। वाह, बहुत खूब मीना जी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6 और आज हम आपको जो गीत गजल सुना रहे हैं वो आधारित है पूर्व न्यायाधीश व कवयित्री श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों ख्याल मीना व एहसास के मोती से। चल की नफरत को तेरी हम भी मोहब्बत कर दें, नैन से नैन मिला कुछ तो शरारत कर दें, अपने वालिद की भी कर लें वो जरा सी इज्जत, नस्ले नो को चलो हम अब ये नसीहत कर दें। मुफ्त में बैठ के तोड़े हैं जो रोटी घर पे, जर कमाने की कोई उनमें भी आदत कर दें, पाठ हमने पढ़ा सत्य अहिंसा का वो, नफरतें सारी मिटा खुद को तथा गत कर दें, इश्क के जुर्म में मुझको न चढ़ा दे फांसी, आप नाराज सही मेरी वकालत कर दें। कुछ करें ऐसा कि गैरत रहे नेताओं में, जिस्त में उनके शराफत की जरूरत कर दें, भ्रष्ट करते न कोई काम बिना पैसे के, क्यों न जायज ही जमाने में ये रिश्वत कर दें, आरजू है नहीं दौलत की मुझे अब मीना, आप अपनी ये गजल मुझको वसीयत कर दें।

0: चल।
1: अब कुछ गजलें आपको सुनाते हैं दूसरे कवि संग्रह है एहसास के मोती से। मीना जी लिखते हैं, वक्त के साथ चली चलती चली मीलों तक, साथ मेरे चली ख्वाबों की कली मीलों तक। आपकी याद में कुछ हाल हमारा यूं था, अश्क बहते रहे दिन रात जली मीलों तक। तेरे दीदार की हसरत थी सदा सीने में, देखते हम थे मोहब्बत की गली मीलों तक। काश मिल जाता हमें कोई जहां में अपना, दिल में हसरत यही अब देख पली मीलों तक। तन्हा था मैं न सफर में थी तेरी यादें भी, तेरी यादें तो थी मिस्री की ढली मीलों तक। खत्म होती है कहां रात गमों की साहिब, चांद की रोशनी भी हमको छली मीलों तक। हमने तन्हा ही गुजारा है सफर ये मीना, हर कदम तेरी कमी हमको खली मीलों तक। बहुत खूब, वाह।

श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, मेरी उल्फत के सहारे मुझे वापस दे दो, वो मेरे चांद सितारे मुझे वापस दे दो। चूम कर माथे को देते थे जो अक्सर तोहफे, चांद से मां के दुलारे मुझे वापस दे दो। हर घड़ी देते थे बचपन में जो ढेरों खुशियां, वो ही जादू के पिटारे मुझे वापस दे दो। देख लो चाक गिरेबान हुआ है मेरा, गुजरे दिलकश वो नजारे मुझे वापस दे दो। जिनको बरसात के पानी में चलाते थे कभी, फिर वो खुशियों के शिकारे मुझे वापस दे दो। अहमियत जिनकी जुदाई में समझ आई है, अपनी आंखों के इशारे मुझे वापस दे दो। खत मोहब्बत में लिखे थे जो तुम्हें मीना ने, आज बेखौफ हो वो सारे मुझे वापस दे दो। आज बेखौफ वो सारे मुझे वापस दे दो।

आज के इस कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हुआ जा रहा है। एक आखिरी गजल मीना जी के कलम से, वो लिखती हैं, लिखी थी इश्क की जो दास्तां कागज पर, वो आज पढ़ रहा सारा जहां कागज पर। सियासी लोग फिजाओं में गोल के नफरत, चला रहे हैं सब अपनी दुकान कागज पर। करे तो कैसे करें फैसला भला मुनसिफ, रकम है सारी ही झूठे बयां कागज पर। अमीर अब तो हड़पते हैं हक गरीबों का, गरीब ढूंढ रहे हैं मकान कागज पर। जफा के दौर में उम्मीद भी है बेमानी, बचे हैं हरफे वफा के निशान कागज पर। जमीन पे तो हकीकत में कुछ नहीं दिखता, मची है चारों तरफ खींचतान कागज पर। न थी सितारों की कुछ आरजो मुझे मीना, उतार लाए मगर आसमां कागज पर। अब आपसे समय है इजाजत लेने का और आपको छोड़े जा रहा हूं एक मनमोहक गीत के साथ। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर धन्यवाद श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी का, जिन्होंने ये काव्य संग्रह हमें यहाँ भेजे। हमारी ओर से ये एक छोटी सी भेंट मीना जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर, नंबर एक बार फिर 7056413010। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, मिलता हूं किसी और कार्यक्रम में। तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित था पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों पर। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: आपने ट्यून किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हो, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हो, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में, और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: हर जज्बा का पर्दा उठे, हंसी के साथ आंसू भी एक मंच पे आ मिलते, सपने जैसे जिंदा होते जब कलाकार।
2: जानेमन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पन्ने पर लिखी हुई कविता जब किसी इंसान का खून पसीना बन जाती है तो वो स्क्रीन पर कैसी दिखती है? जी हाँ, नमस्कार। एक एक्टर को फिल्में कैसे देखनी चाहिए, इस सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज भी एक फिल्म को जी कर आया। फिल्म का नाम है व्यास। गुरदत्त साहब की एक ऐसी मास्टर क्लास जो हर उस इंसान को देखना और सुनना चाहिए जो एक्टिंग की बारीकियों को समझना चाहता है। आज हम बात करेंगे मुख्य किरदार विजय की, और इसे समझने के लिए हम हवा में बातें नहीं करेंगे, हम सीधे चलेंगे प्यासा के तीन ऐसे सीन्स में जो हर नए एक्टर के लिए किसी एक्टिंग स्कूल से कम नहीं है। याद कीजिए वो पल जब विजय को घर से निकाला जा चुका है, वो सड़क पर भटक रहा है और अचानक देखता है कि उसकी जिंदगी भर की कमाई, उसकी कविताएं एक रद्दी वाली के पास 10 आने में बिक रही है। इस सीन में गुरदत्त साहब को ध्यान से देखिए, वो जोर से छाती नहीं पीटते, रोते नहीं, उनकी आंखों में एक खालीपन है। वो बस उस रद्दी वाले को अपनी नजमें फाड़ते हुए देखते रहते हैं। इसे एक्टिंग की भाषा में कहते हैं इंटरनल मोनोलॉग, यानी कि आंतरिक संवाद। उनके होठ खामोश है लेकिन उनके अंदर एक तूफान चल रहा है। नए एक्टर्स को सीखना चाहिए कि आपका दर्द आपके चेहरे की मांसपेशियों से नहीं, आपकी आंखों की गहराइयों से आता है, वहीं से वो दर्द छलकता है। अब आते हैं दूसरे सीन पर। विजय एक पार्क की बेंच पर लेटा हुआ है, थका हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कोई उसी की लिखी हुई नज़में गुनगुना रहा है। ये है गुलाब। इस सीन में विजय का रिएक्शन देखिए, स्टडी कीजिए उसके रिएक्शन को। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, एक्टिंग इज रिएक्टिंग, एक्टिंग इज लिसनिंग। जब विजय सुनता है कि उसकी बेगानी दुनिया में किसी अजनबी ने उसके शब्दों को अपना लिया है, तो उसके चेहरे पर जो अविश्वास, जो हैरानी नजर आती है, वो कमाल है। एक एक्टर के तौर पर आपको सीखना है कि सुनना कैसे है। सिर्फ अपनी लाइन का इंतजार मत कीजिए, दूसरे के शब्दों को अपने अंदर जाने दीजिए और फिर रिएक्ट कीजिए। और अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की, जो इस फिल्म का एक अहम सीन भी है। याद कीजिए, ऑडिटोरियम खचाखच भरा है और दरवाजे पर एक परछाई उभरती है। विजय वहाँ खड़ा है। पूरी फिल्म में जिस विजय के कंधे झुके हुए थे वो अचानक बदल जाता है। वो मंच की तरफ बढ़ता है जैसे जैसे कोई विद्रोही, और फिर वो एक गाना गाता है। बड़ा फेमस गाना है वो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपका किरदार अंदर से आजाद होता है तो उसका असर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर दिखना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है। वो झुका हुआ इंसान इस सीन में समाज से बहुत ऊंचा नजर आने लगता है। तो भाई लोग, इन सीन्स में हमने खामोशी, सुनना और बॉडी लैंग्वेज सीखी। चलिए अब वक्त है आपके आज के स्पेशल होमवर्क का। चूंकि हमने सुनने यानी कि लिसनिंग की बात की है, तो आज का चैलेंज भी यही है, और इसे हम कहेंगे डीप ब्लाइंड। अब आपने करना क्या है, आपने अपने किसी अभिनेता दोस्त या फैमिली मेंबर को एक पैराग्राफ देना है। वो पैराग्राफ बहुत गुस्से वाला होना चाहिए या उसमें इमोशंस भरे हुए होने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। अब अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपने दोस्त को कैमरे के पीछे खड़ा कीजिए और कहिए कि वो पूरे जज्बात के साथ वो लाइनें पढ़े। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है। कोई बनावटी एक्सप्रेशन नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बस उन शब्दों को अपने कानों से होकर दिल तक जाने दीजिए, और जो असली रिएक्शन आपके चेहरे पर आए उसे रिकॉर्ड होने दीजिए। यकीन मानिए, कैमरे पर आपका वो सच्चा रिएक्शन आपके बोले गए हजारों डायलॉग से ज्यादा खूबसूरत हो। इसे रिकॉर्ड कीजिए, खुद देखिए, और हाँ, मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि बिना शब्दों के खेलना कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही है ना। सीखते रहिए और कला को जीतते रहिए। मिलते हैं अगली फिल्म और एक नई मास्टर क्लास के साथ। नहीं

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तपकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं अलग अलग, अलग अलग परछाइयों की

जो बरसों से बस गई है उसके सीने में जागती है तमाम रात, झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें, जो मुझे न सोने देती हैं न रोने देती हैं।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

कल रात एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख में चौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहलाकर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों है खफा एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने जिंदगी से पूछा, क्यों इतना दर्द दिया तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। सुकून मौसीकी में आप सभी का स्वागत है, और मौसीकी के इस दौर के बीच में आज के सफर में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। ये मान लेना कि आगे क्या होगा, यही तो जिंदगी है, लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी है। और हां, जिंदगी कभी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी रुकती है पल भर को, तो कभी चलना शुरू कर देती है, क्योंकि एक जगह पर खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी के बीच में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं, दिन है तो रात भी होती है, अंधेरे हैं सुबह के उजाले भी नसीब होते हैं, लेकिन कभी कभी वो दो लोग जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, उनके ऊपर ऐसा वक्त भी आता है कि अपनी आवाज, अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने के लिए उनको नगमों का सहारा लेना पड़ता।

मोहब्बत तो अपने आप में एक सरमाया है, ये सबको नसीब नहीं होती। कुछ ऐसे खास किस्मत वाले होते हैं जिनको ऊपर वाले ने इस खास नेमत से नवाजा होता है। ये दौलत है, मोहब्बत सुकून है, मोहब्बत लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से किसे प्यार नहीं होता। यूं ही हर कोई नहीं कहता कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

और जब किसी भी वजह से जो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं ना, तो फिर इनका दिल इस दुनिया में तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही एक दूसरे के साथ ही होती है। ये तो एक दूसरे से जुदा होकर रहने का सोच भी नहीं सकते। बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं, और जो आवाज फिजाओं के बीच में गूंजेगी वो यही होगी, ये दिल तुम बिन कहीं।

एक नामुराद बीमारी सी है ये मोहब्बत, फिर भी खींचती है अपनी तरफ, और ना चाहते हुए भी आदमी प्यार के समुंदर के बीच में डूबता चला जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो खुद ही ये कह बैठता है कि मैं इस दलदल में क्यों फंसा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।

झरने की आवाज, जो पानी की आवाज है ना झरनों के बीच में से आती है, कई बार वो आवाज भी अपने महबूब के पांव में बची हुई पाजेब की झंझनाहट सी महसूस होती है और टप टप टप कर गिरती ये बारिश की बूंदें, ये भी अपने आप में मौसीकी का एक वो अंदाज लेकर चलती हैं जिससे सुकून मिलता है और महबूब अपने दिल की बात अपने दिलबर तक पहुंचाने के लिए आवाज देता है, तुझको पुकारे मेरा प्यार।

कितनी भी आवाज दो, लेकिन दुनिया की रस्म रिवाज बेबस कर ही देती है कि वो आवाज महबूब तक ना पहुंचे। न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हम। आवाज दे के हमें न तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।

और जब बहुत यत्न करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बेकार है। महबूब के बिना इस दुनिया के बीच में मेरा कोई भी अपना नहीं है। जिंदगी से नफरत सी होने लगती है। 4 दिन की जिंदगी में मैं किससे कतरा के चलूं? खाक हूं मैं, क्या खाक पे इतरा के चलूं? दिल की आवाज सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।

एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भरी रेत की और हवा में उछाल दी। लेकिन महबूब ने जो भेजा वो फूल नहीं, एक खत था, और फूल की शक्ल में दिल के सारे अल्फाज उसमें बयां हो रहे थे। फूल, तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, मेरा दिल है।

ये कायनात, ये दुनिया, ये आबो हवा, ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ये तैरते हुए बादल, ये अपना अफसाना कहती हुई खूबसूरत हवाएं, कई बार ऐसा मदमस्त माहौल बना देती हैं कि इंसान तो क्या बादलों के लिए भी कहना पड़ जाता है। दीवाना हुआ बादल, आइए आप भी सुकून मौसीकी के इस रवानगी के बीच में अपने आप को बहा लें। यही वक्त है, यही मौका है, तो इंतजार किस बात का।

बांसुरी की तरह है जिंदगी। इसमें बहुत से छेद रूपी बाधाएं हैं और जिसको इसे बजाना आ गया ना, उसे जिंदगी जीना आ गया। बांधकर मुझसे उड़ने को कहता है, मेरा कातिल ही मुझे जीने को कहता है। हर कदम देता रहा जो मुझको धोखा, बेवफा दोस्त वफा करने को कहता है। किससे करें फरियाद इंसाफ के लिए, मुझे लूटने वाला ही मेरे घर में रहता है। ना कर तजवीज तुम मुझसे मोहब्बत की, मेरे दिल में अरसे से एक बेमुरव्वत रहता है। फिर भी अगर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता।

सोचता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया के बीच में तो ऐसे शख्स क्यों आना है जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा देखते हैं। एक को चोट लगती है, दर्द दूसरे को होता है। शायद यही मोहब्बत है। बेशक ना मिल पाए हूं, अलग अलग हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में यह ख्याल तो आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए।

वायदा खिलाफी तो अक्सर मोहब्बत के बीच में देखी और सुनी जाती है, जिसे बेवफाई का नाम दिया गया है। बहुत वायदे कर लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक ही वायदे हैं जो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें, और अगर खास मौके के इंतजार में रहे ना, तो इन खास मौकों के इंतजार ने करोड़ों सपनों को बर्बाद किया है। जो वादा किया है उसको अभी ही निभा लें, आने वाला कल पता नहीं एक पल भी आपको देगा या नहीं देगा।

हसीन मौसम हो, खूबसूरत फिजाएं हों और महबूब का साथ हो, तो मरुस्थल के बीच में भी बाहर सी लगती है। तू जो मिल जाए तो खुशियों का रेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का ढेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद तो वो है कि जो मेले में भी अकेला कर दे। और ऐसे हसीन खूबसूरत आशिकाना मौसम के बीच में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी अपने का साथ, किसी अपने का अंदाज, ताकि दोनों ही मिलकर कह सके कि मौसम आशिकाना है।

बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। और बहुत सी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, क्या है ये जिंदगी? जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी कहानी है, और हम दोनों की कहानी इसी का नाम है जिंदगी।

सुकून मौसीकी की मार्फत हमने आपके दिलों में दस्तक देने की एक कोशिश की है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने ख्यालात, अपने विचार हमारे को हमारी ईमेल आईडी radiodasta@gmail.com के ऊपर जरूर भेजें, ताकि हम हमें प्रोग्राम आपकी मर्जी के मुताबिक पेश कर सकें। रेडियो वितस्ता की आज की खास पेशकश सुकून मौसीकी में मैं रहा आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। आपका हम सफर

अब दीजिए अपने इस दोस्त को इजाजत, फिर मिलता हूँ किसी और प्रोग्राम के बीच में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मेरी हो, रूह मेरी तू मुझ में खो, रूह मैं तेरा आशिक हूँ, रूह मैं तेरा शायर हूँ, तेरे लिए मैं लिखता हूँ, तेरे लिए मैं सोता हूँ और तेरे लिए मैं जगता हूँ, रूह तू मुझ में बहती है, फिर क्यों नहीं कुछ कहती है, खामोशी को अब तू छोड़, दुनिया से अब नाता तोड़, रूह मेरी तू अब कुछ कहे, बहुत हुआ अब मत चुप रह, मत रह अब तू बिल्कुल गुमसुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो मेरी सांसें हैं तेरे लिए ये चलती हैं, दिल में जो ये धक धक है कुछ नहीं तेरी आहट है, रूह मेरे जीवन की डोर तुझसे बंधी है और से छोर, रूह तू मेरी ही रहना, रूह तू मुझ में ही बहना, मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रूह तू मेरी ही रहना, रूह तू मुझ में ही बहना, मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो मेरी जीवा है तेरे लिए ये कातर है, रूह रूह ये करती है, खामोश नहीं ये रहती है, सचमुच बिल्कुल पगली है, रूह रूह की इसकी रट बिल्कुल भी नहीं बदली है, रूह तू इसकी रट को सुन, कुछ मत सोच इसे बस चुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, ये जो तेरी चाहत है ये दिल में मेरे बसती है, यादों के ये दीपक बनकर आंखों में मेरे जलती है, श्रवणों में तेरा नाम है रूह, नथनों में तेरी खुशबू है, होंठों पर तेरी प्यास है रूह, पौरों पर तेरी हस्ती है, इस दीवाने की दुनिया में तेरी ही है बस रुंझुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

ये जो मेरी आंखें हैं हर दम गीली रहती हैं, खामोशी के साए में चुपचाप बहुत कुछ कहती है, तो इनका जिंदा सपना है, तो इनका बिल्कुल अपना है, पलकों पर इनके तू ही है, पानी के घर में तू ही है, पानी के घर में तू ही है, ये तेरी राह ही तकती हैं, ये तेरे लिए ही सजती हैं, ये तेरी याद में रहती हैं और तेरे प्यार में बहती हैं, इनको बस है तेरी धुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छुपा ले, दीपक ये जल जाएगा, हाथ नहीं फिर आएगा, खामोश मोहब्बत सिसकेगी, छाती में तेरे धड़केगी, तू चैन बिल्कुल पाएगी, रोते रोते मर जाएगी, बातें मेरी याद आएंगी, बेचैन तुझे कर जाएंगी, रोता मेरा बेबस चेहरा, रोता मेरा बेबस चेहरा, घाव तुझे देगा गहरा, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, चला छोड़ जाऊंगा मैं, चला छोड़ जाऊंगा मैं, नहीं के भी आऊंगा मैं, मत होने दे ऐसी बात, रूह तेरे है सब कुछ।

रूह में तेरा बच्चा हूँ, रूह में बिल्कुल सच्चा हूँ, रूह रची है मुझ में तू, रूह बसी है मुझ में तू, पोरों पर तू ही लिपटी है, रोमों में तू ही पसरी है, बिन तेरे में जल बिन मीन, बिन तेरे में जल बिन मीन, ना मुझसे मेरा जीवन छीन, मुझ जातक की तू है प्यास, तू मेरा जीवन तू मेरी आस, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छपटा ले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छपटा ले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम। रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली,

0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: ये तो कौन मांगता?
1: जानी जानी चुले का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान।

0: मेरी नहीं मांगता हमको लेली नहीं मांगता हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता
1: तो कौन मांगता
0: ए जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: दिलों में प्यार का एहसास जगा देता है। ये वो धागा है जो दूरियों को मिटा देता है। हम यहाँ सिर्फ गाने बजाने नहीं आते, हमारा मंच तो दिलों को दिलों से मिला देता है। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर, जो आपके हमसफर है जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी फरमाइश। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी,
1: और मैं हूँ आपके साथ कृष्णा। मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार। भारत जी, आज का मौसम और हमारे श्रोताओं का मूड दोनों ही बड़े कमाल के लग रहे हैं।
0: बिल्कुल कृष्णा, आज का मौसम इतना गर्म है और इतनी गर्म हवाएं चल रही है, पर फिर भी जो हमारी कोशिश है, जो हमारे शौक होते हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर हफ्ते का वो दिन आ ही गया है जिसका हमें सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं कि जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, वो इससे महज एक गानों का प्रोग्राम ना समझे।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भारत जी। हम यहाँ केवल आपकी फरमाइशें ही नहीं सुनाते, बल्कि हम तो दिलों को दिलों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ आपके संदेश या संगीत की धुनें ही नहीं है।
0: बिल्कुल सही। सच कहें तो आपकी हर फरमाइश में छुपा एक इकरार होता है। इसमें आपका अनमोल स्नेह और बेपनाह प्यार होता है। पल पल जो कटता है आपकी यादों के साए में, ये वो मीठा सा खूबसूरत सा इंतजार होता है। हमारे लिए आपकी फरमाइश आपका वही प्यार है, और वो हफ्ते भर का मीठा सा इंतजार है जो आप हमसे जुड़ने के लिए करते हैं। आपके इसी इंतजार को खूबसूरत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं सदाबहार गीतों का एक बेहतरीन गुलदस्ता।
1: तो फिर देर किस बात की, आप अपनी धड़कनों को थामिए, चाय की चुस्कियां लीजिए और डूब जाइए सुरों के इस समुन्द्र में है। भारत जी और मेरे यानी कृष्णा के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। आइए सुनते हैं आज की पहली फरमाइश, सीधे आप सभी के नाम आज की पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से। भेजने वाले श्रोता हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आराधना का गीत। गीत के बोल हैं बागों में बहार है, और गीत को अपनी आवाज से सवारा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। तो लीजिए, पेश है इन सभी की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

0: सोमवार है,
1: है,
0: आज सोमवार है,
1: अरे है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: आप श्रोताओं की नज़र एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान का गीत। गीत के बोल है, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने और रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद सिंह राहुल। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत।

फिर से अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अंबाला कैंट से भेजने वाले श्रोता हैं उषा कौशल जी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म मधुमती का गीत। गीत के बोल हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसी, जिसे अपनी आवाज से सवारा है मुकेश जी ने। पेश है उनकी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नवी मुंबई से भेजने वाले श्रोता है सोनिया शर्मा और ये है सीबीडी बेलापुर से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म छाया से गीत। गीत के बोल है इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा। आइए प्रस्तुत है सोनिया शर्मा जी का ये पसंदीदा गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दो चोर से गीत। गीत के बोल हैं चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। लीजिए पेश है इन सभी की पसंद का ये गीत।

आप सभी की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से भेजने वाले श्रोता है पीएस नाहवकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कोहिनूर से गीत, गीत के बोल है दिल में बजी प्यार की शहनाइयां। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। पीएस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। और ये धन्यवाद भी करते हैं आप सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें फरमाइशें भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिलों को हम दूसरे श्रोताओं के साथ जोड़ दें। तो आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

से अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेवर यमुनानगर से, भेजने वाले श्रोता हैं रणबीर, जगमाल, फूल सिंह, शमशेर, अंगराज और विकास पंजेता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हीर रांझा का गीत। गीत के बोल हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी जी ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये पसंदीदा गीत।

0: नहीं।
1: आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्रपुरी अम्बाला कैंट से भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इजाजत से गीत। गीत के बोल है खाली हाथ शाम आई है। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने। आइए, प्रस्तुत है मदन गोपाल सैनी जी का ये पसंदीदा नगमा।

पेश अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव वो अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं राहुल अलियान। ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजा और रंग का गीत। गीत के बोल हैं ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, जिसे अपनी मधुर आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी ने। तो लीजिए प्रस्तुत है उनकी पसंद का ये मीठा सा गीत।

आपको सुनाते हैं श्रोताओं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। बंशीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर और पूरा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत से गीत। गीत के बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और आइए सुनते हैं बंशीलाल संधू और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव करधान अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं संदीप शर्मा, ये सुनना चाहते हैं फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का गीत। गीत के बोल हैं, ऐसे तड़पूंगी जैसे जल बिन मछली, जिसे अपनी मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने। पेश है इनका ये पसंदीदा मधुर सा गीत।

आप ट्यूनिंग किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप इस कार्यक्रम को आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी अपनी फरमाइश इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश कर सकते हैं। आपको हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर गीत के बोल, फिल्म का नाम लिख के भेजना होगा। हम आपकी फरमाइश हर शुक्रवार दिन के 2 बजे पूरी करेंगे और उसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। आप अपनी फरमाइशें हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसके साथ ही आप सभी के लिए प्रस्तुत है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी और ये सुनना चाहते हैं फिल्म बन फूल से गीत। गीत के बोल है मैं जहां चला जाऊं। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। और साथ में ये कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आप सभी श्रोताओं का और निसार सलमानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप हमारे पास अपनी फरमाइशें भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता ऐसे ही फरमाइशें भेजते रहेंगे। आइए प्रस्तुत है आप सभी का ये पसंदीदा गीत।

तो पेश है आप सभी की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं अनिल जी, ये सुनना चाहते फिल्म जीत का गीत। गीत के बोल हैं शीशी भरी गुलाब की, जिसे अपनी आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने। तो पेश है उनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। और अब हम लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है हसीमारा वेस्ट बंगाल से, और भेजने वाले श्रोता है ममता राव। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है श्रीनिवास राव और आध्या। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खामोशी से गीत, गीत के बोल है तुम पुकार लो। इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार साहब ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा गीत, और इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत। मैं और कृष्णा हम आपके लिए हर शुक्रवार को लाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। उम्मीद करते हैं कि अगले शुक्रवार को आपसे आपके नई फरमाइशों के साथ हम रूबरू होंगे और आप सभी श्रोताओं को वो गीत सुनाएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: पेश है प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2, कलाम भारती रैना। पेश कर रहे हैं आरजे किरनी।
2: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। पेश है प्रोग्राम शामे गजल। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी है, जो ओरिजिनली रैना वारी श्रीनगर कश्मीर की बाशिंदा है, अब जम्मू में कयाम पजीद है। उनकी लिखी गई गजलों को अपनी आवाज से सजाया है कश्मीर के मायोनाज गुलोकार कैसर निजामी साहब और सुमन पंडिता जी ने। जिंदगी की कहानी में हर पल एक नया रंग है, हम ना रहे तेरे तलबगार पर तू हमेशा संग है, हर मोड़ पर नया सफर साथ संग चले।

गुर्बत की राह में मजबूर है हम, जिंदगी के सितम से बेखबर है हम, पर दिल में उम्मीद की एक किरण है कि मुश्किल को सहकर अपनी मंजिल पा लेंगे।

सांसें भी उदास, दिल भी है बेकरार। जिंदगी के सफर में कुछ तो है यार, हर कदम में ठोकर खाए मगर फिर भी मुस्कुराहट से आगे बढ़े।

कुदरत की तराशी गजल हूँ मैं, दिल के हर धड़कन में बसी कहानी। लोग समझते हैं कुछ नादान हूँ मैं, मेरी शायरी में छुपी है एक मुस्कुराहट रवानी।

जिंदगी के कुछ पल हैं ऐसे जिनमें बसी है मीठी मीठी यादें, दिल को छू जाती है वो मीठी से यादों का अफसाना।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शामे गजल। उम्मीद करते हैं आपको ये गजलों का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक 705641301 पर भेज सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

रहे थे प्रोग्राम शाम गजल एपिसोड 2। आज का प्रोग्राम भारती रैना की लिखी गजलों पर मबनी था। पेश किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, हिदायतकार भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन व प्रस्तुत किया आरजे किरने ने।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका एक खास सफर में, जहां दिल की बातें करेंगे, दिल से दिल तक का सफर। लेकर आई हूं रेट्रो का एक और अंक, दिल की बात, जहां हम पुराने गीतों के जरिए उन यादों को फिर से जिंदा करेंगे, जो कभी आपके दिल के कोने में छुपके से बस गए थे। दिल की बात दिल में छुपाया नहीं करते, वक्त बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं करते। जाहिर कर दो जज्बात अपने दिले नादान के, मन की बात बोलने में वक्त लगाया नहीं करते।
2: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रू।

खामखा ही परेशान हो जाएगा कोई भी शख्स, हर किसी को दास्ताने दिल सुनाया नहीं करती। ख्वाबों में तो तुम मेरी हो चुके हो पूरी तरह, फिर क्यों हकीकत में सामने आया नहीं करती।

0: मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो,
1: ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो।
2: ये लोग क्या समझेंगे मोहब्बत के वजूद को, क्योंकि लूटने वाले कभी इज्जत कमाया नहीं करते। इश्क में दर्द का भी एक अपना मजा होता है, यूं ही ये दर्द सबको दिखाया नहीं करते।

0: यादों की तिप्स में सुलगा है ये दिल मेरा, हम भी यूं बेवजह नाराज नहीं हुआ करते। तुझसे मोहब्बत मुझे पहले भी था, आज भी है, वरना हर रोज तेरी तस्वीर सीने से लगाया नहीं करते।
1: हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना।

सोचा आज उनसे अपने दिल की बात कर दूं, लेकिन दिल ने अपना इरादा बदल लिया। कहने को तो बहुत कुछ कहना है, हमने देखा तो उनकी निगाहों ने पर्दा कर लिया।

सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तभी जिंदगी से नहीं ये फिजाए, यहां सैकड़ों कारवां और भी है।

अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है।

0: बने।
1: दिल की धड़कन भी एक कहानी कहती है, हर धड़कन में छुपी कोई निशानी रहती है, कभी खामोश तो कभी शोर मचाती है, दिल तो बस प्यार का गीत सुनाती है।

दिल है छोटा सा पर इसमें गहराई है, हर धड़कन में छुपी एक परछाई है, कहना चाहे जो बातें मगर चुप सा है, दिल भी तो इंसान की तन्हाई है।

0: जिंदगी के इस सफर में कुछ पल आपके साथ बिताए, उन लम्हों की महक दिल में हमेशा बस जाए। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है दोस्तों, पर यादों का सिलसिला कभी ना टूट पाए। छोड़ते हैं आपको एक मुस्कान के साथ, अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए जज्बात के साथ एक नए कार्यक्रम में। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 9। आज का विषय है दिल की बात। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया RJ किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।

तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर

0: वो छोटी सी रात वो लंबी
1: गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पर गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से, संजीदा जज्बात से

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

सन 1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं, गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक

आप सुन रहे थे रेडियो गीतस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट कृष्णा, चाहूंगी आपसे आज्ञा। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जाने से पहले मैं कुछ पंक्तियां अपनी मम्मी के नाम, जिनको मैं प्यार से मी बोलती हूँ, उनके लिए हमने लिखी थी, तो प्लीज हम आपको सुनाते हैं। वो मैंने पंक्तियां इस तरह है कि हम सोचते थे कि हमारी इसको हर जन्म में मुझे वही यही माँ मिली जो हमारे इस जन्म में है, इस जन्म में थी। वो पंक्तियां इस तरह है। फिर एक बार मुझे तुम्हारी, फिर हर बार मुझे तुम्हारी ही गोद में सोना है। तुम्हारी पलकों का हर सपना मुझे फिर से संजोना है। अब की बार जन्मे लूं, अब की बार जो जन्म लूं, सौगातें खुशी की दूं, सावन उम्मीदों का दूं, बरसातें जिंदगी की दूं। मेरा पसंदीदा बिस्तर तुम्हारी गोद का बिछोना है, फिर हर बार मुझे तुम्हारी गोद में सोना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।